हरम दिव्यम गांगेयम निर्मलम जलम आचमन्यम मया दत्तम गृहान परमेश्वरम। ओम वनस्पतिर्सो भूतो गंधाजो गंधरुद्धम आग्रिय सर्वदेवानां धूपोयम प्रति गृहता। Everyone, lift your hands and receive blessings. Let's all chant. Om.

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उसे धरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: Ricky Ramlagan with you, and it's your Sundar Sapna, 102.7 FM.
1: अरे देख रहे हैं
2: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं
2: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा
2: तो क्या हुआ भाई।
1: हाँ तो हट जाए
2: हट जाए।

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Beautiful brides, your perfect wedding look begins at Rosari's Bridal. Discover stunning bridal lehengas, elegant saris, exquisite couture and regal sherwanis, all designed to make your special day truly unforgettable. Visit Rosari's Bridal, where fashion meets tradition. Opening daily 9 AM to 8 PM at Brentwood Trigonus. Follow Rosari's Bridal on Facebook and Instagram.

प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: Radio Jagati 102.7 FM. Not only a radio station, it's part of the family.
1: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय.
2: Beautiful brides, your perfect wedding look begins at Rosari's Bridal. Discover stunning bridal lehengas, elegant saris, exquisite couture and regal sherwanis, all designed to make your special day truly unforgettable. Visit Rosari's Bridal, where fashion meets tradition. Opening daily, 9 a.m. to 8 p.m. at Brentwood Trigonus. Follow Rosari's Bridal on Facebook and Instagram.

0: I'm sorry, Kavita ji. आप कभी माँ नहीं बन सकती.
1: पता नहीं कोई अपने बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ सकता है.

0: हेलो कविता जी, हम शिव प्रेम अनाथ आश्रम से बात कर रहे हैं। श्याम की माँ उससे मिलना चाहती है।
1: क्या हुआ माँ?

0: कुछ ही महीने बचे हैं आपके पास, कैंसर लास्ट स्टेज पे है।
1: आई एम सॉरी कविता जी, आपको भी माँ नहीं बन सकती।

0: मेरा तो दूसरा जन्म है ये, बस कान्हा ने बचा लिया।
1: छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
0: डरो मत,
2: मैं हमेशा सोचती थी कि इसके जन्मदिन पर आऊं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। कृष्णा यशोदा के थे और उन्हीं के रहेंगे।
3: श्याम जितने यशोदा के थे उतने ही देवकी के। श्याम की दो माएं थी और हमेशा रहेंगी।
1: छोटी

0: आपका धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति
1: McCoya, discover the all-new Indian Style Expo, the exciting new chapter following Incredible India Expo. Open daily from 10 a.m. to 8 p.m. opposite the Center of Excellence. Shop beautiful bridal and temple wear, jewelry, footwear, home furnishings, decor, puja items and much more. Try some of the delicious items at Zaika Restaurant and enjoy refreshing drinks from AK Juice Center. Indian Style Expo, a complete Indian shopping and lifestyle experience.
2: Fab India Expo in Chaguanas is open every day from 11 a.m. to 9 p.m. Fresh containers have arrived with brand new stocks. Exciting new merchants have joined us, bringing a huge variety of products at unbeatable bargains. Indulge in spa services, soothing chumpy massages, and taste authentic Indian cuisine. Fab India Expo, endless variety, endless value.
3: This is Pankaj Tripathi. Catch my upcoming film Mirzapur, the movie in cinema near you from 4th September.
4: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पे जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया
5: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली
6: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते यही गद्दी का नियम है